कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते

गमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

0: माफ कीजिएगा समीर, तस्वीर उतरवा रहे थे हम। समीर एक सवाल भी है लेकिन कुछ आपके मैसेजेस भी आए हैं, किस से शुरू करूं? पहले होता ये है कि हम आपके मैसेजेस से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहला मैसेज जो हमें अपने टाइम में मिला है वो ये है, गुड मॉर्निंग परवीन जी, न्यू डे न्यू वीक, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। आई रिमेंबर ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा सब मैंने इतना सुनाया था कि मैं तंग आ गई थी, पर आज क्योंकि रूपल, मेरे ख्याल से रूपल है ये, जी हाँ रूपल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल रूपल, करते हैं ये आपकी फरमाइश पूरी और फिर मुनीर के पास चलते हैं। मुनीर कहती हैं जिंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं। सब लोग कहते हैं बता रिश्ते ना बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, वो कहती हैं ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे मुनीर। और सलमा आमद क्या कहती हैं?
1: दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती मोहब्बत से हो तो प्यार बन जाती है, दोस्ती अनजान से हो तो पहचान बन जाती है, दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा अहमद किसुमु।
0: आप सबकी दोस्ती बेमिसाल अंदाज से, क्या बात है, पहचान से कहीं आगे चली गई है। अमीर अली राना, परवीन जी विशिंग यू एंड ऑल द बेमिसाल अंदाज लिसनर्स वेरी गुड मॉर्निंग। मोहब्बत सबको मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं इस दिल को, हम भी उनको याद आए जरूर, हम भी उनको याद आए ज़रूरी तो नहीं। कहते हैं कुछ लोग ना हमें बहुत याद आ रहे हैं लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो भी हमें याद करते हों। बिल्कुल, अगर आप याद करते हैं ना वो आपको याद नहीं कर रहे ये ज़्यादा होता है। ओके, भरत गंगाराम आपने भेज दिया है वंदनीय परवीन जी को बहुत ही प्यारा मैसेज और सबको विश किया है नमस्कार। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रास्ते साफ कर रहे हैं,

बात है अरफा उंगटा रुंगाई कहती हैं अल्लाह तलत की आवाज में ये गीत सुनकर मैं क्या कहूं जिन जिन को मैं याद करती हूं ना ये गाना सुनकर मेरा दिल झूमता है ये उन सब के नाम क्या बात है जिनको याद किया आपने और सब नाकाबिले फरामोश है ये तलत का गाना अनफॉरगेटेबल अरफा आई एम सो हैप्पी आपकी और हमारी पसंद बहुत मिलती है इनफैक्ट काफ़ी लिसनर्स के साथ और समीर मैंने आपको ये भी बताना है कि जेनरेशंस ऑफ ग्रेट म्यूजिक एक जेनरेशन नहीं यानी एक नस्ल नहीं दो तीन नस्लों का समीर जो संगीत है आप एक बार सुनेंगे आप कभी भूल नहीं पाएंगे वन नाइट ओनली इवेंट हो रहा है जिसमें चार बहुत ही उम्दा फनकार आ रहे हैं ये तमाम समिंद मुख्तलिफ नस्लों के गाने सुनाएंगे आपको स्टेज पर टाइमलेस क्वीन ऑफ आर एन बी की जो क्वीन है कैरन वाइट वो भी हैं और फिर ग्रैमी अवार्ड जिनको मिला था समय कर्क वेलम है सेक्सोफोन प्ले करते हैं फिर किंग ऑफ बोंगो अली किबा हैं बहुत मशहूर हैं तो समय जैज की ये परफॉर्मेंस आपको आके देखनी ही है बस टिकट ये टू डॉट कॉम पर अपना बुक कर लें टिकट ये 31 मई और सरित सेंटर का जो एक्सपो हॉल है वहाँ होने वाली है सो ये ना हो कि फिर लोग आ जाएं और आप बस पछताते रह जाएं मदरका का वीकेंड बेहतरीन बनाएं वन नाइट ओनली

यहां पर मैं तस्वीर देख रही हूं जो शमीम ने साउथ अफ्रीका से भेजी और ये प्लास्टिक की बोतलें टंगी हुई हैं, एक वुड का स्ट्रक्चर है, कहती है इन टंजानिया प्लास्टिक बॉटल्स, ये जो प्लास्टिक की बनी हुई बोतलें हैं, आर यूज टू क्रिएट बी हाइव्स, वो ना शायद की मक्खी का घर बनाते हैं, ऑफरिंग सेफ शेल्टर फॉर बीज वाइल सपोर्टिंग लोकल हनी प्रोडक्शन। वैसे बी तो अपना खुद का बना लेती है घर, आप इसको प्लास्टिक का घर दे रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी अच्छी हम इसको पनाह दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर स्टोरी अच्छी थी। शमीम, नितेश बहुत शुक्रिया आपको, ब्लेसड मंडे आपने कहा है कि खुदा सबको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। चिराग पटेल, हाउ वॉज योर वीकेंड, होप इट वेंट वेल, mine was good and was very relaxing, was just at home most of the day, in the evening celebrated Arsenal winning the Premier League. Bilkul, ye to pata nahi sari duniya mein bas Arsenal ho raha hai. Chirag Patel kehte hain hope you feel better, thank you Chirag Patel. Ye hai na ke baat hum mic share karte hain, so samin agar kisi ko thode si bhi ho इन्फेक्शन तो ऑफ कोर्स जब आप जाएंगे उस माइक पर तो आपको ज़रूर है होगी। और पत्ता पत्ता अभी नहीं आया, मैं अभी सुनाती हूँ क्योंकि मैं तलत ख़त्म कर लूँ फिर पत्ता पत्ता करेंगे इकट्ठा। लाइफ इज लाइक अ सी, वी आर मूविंग विदाउट एंड, नथिंग स्टेज विद अस, व्हाट रिमेन्स इज जस्ट द मेमोरीज ऑफ सम पीपल हु टच्ड अस एज वेव्स। सना काना बहुत शुक्रिया, तलत अगेन

और समिन ये बात हुई है असना काना के बाद कौन आए रंजन विनोद बहुत खूब ऑल द बेमिसाल अंदाज लिसनर्स को नमस्कार किया है मिस्टर एमएल विश्वकर्मा कौन कहता है कि खामोशियां खामोश होती हैं कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो खामोशियां वो कह देती हैं जिनके जिनकी लफ्जों में तलाश रहती है खामोशियां पर ये बात है ना कि खामोशी को इंटरप्रेट करने वाले बहुत कम हैं खामोशी को देखकर कौन सोचता है कि इसमें कौन से अल्फाज छुपे हुए हैं बट एम एल विश्वकर्मा आपने शुभ प्रभात किया है मेरे कमेंट्स वो मेरे ही हैं आपके आपने जो भेजा बहुत अच्छा है रसिला आपने कहा है कि द चिल एज चिल्ड्रन यू नोटिस राजेश खन्नास चार्म That smile, that warmth, that impossible ability to make even illness look full of life. Ye tha inka kamal, Rajesh Khanna ka. Then adulthood arrives and suddenly Babu Moshai starts making sense too. Achha, Amitabh Bachchan's silence in that film is extraordinary. He spends half the movie watching Anand live fondly. While quietly preparing himself for loss. बिल्कुल ये फिल्म आनंद की आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छे थैंक यू रसिला अच्छा पहले एक तलत और फिर समय कई और तलत भी आ रहे हैं लेकिन पहले इस तलत को

और सर बात हो रही थी कृष्ण सरोवर से और वो बता रहे थे एक बहुत ही बढ़िया इलाज है बैठे हुए गले का। अब देखें कि समिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतनी ऐसी खबर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या खबर है समिन? यहाँ पर जो बुजुर्ग शहरी हैं केनियन, मैं केनियन की ऐसे मिसाल दे रही हूँ, तो समिन केनिया में जो बुज़ुर्ग हैं 70-80-90 साल के, जिन्होंने कभी काम किया था या जिनके शौहरों ने काम किया था, उन वाइफ्स को पेंशन दी जाती है और वो पेंशन भी है थोड़ी सीनियर सिटीज़न अलाउंस जैसा भी है। कितना? 2000 शिलिंग। समिन 2000 शिलिंग क्या है भला आज के ज़माने में? तो ऐसे ही इंडिया में भी हैं पाने वाले पेंशन, लेकिन समय जो खबर आप सुनेंगे वो पेंशनर की, आप ना जाने क्या आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है।

रोशन सर्वे ने कॉल किया है और मुझे हुक्म दिया है. क्या हुक्म है? कहते हैं कि पता है क्या, तलत महमूद एक फिल्म में हीरो थे नूतन के साथ. वो फिल्म मैंने देखी थी, मैं भूल नहीं सकता. कहते हैं इतनी बढ़िया फिल्म थी. अच्छा, तलत महमूद और नूतन, क्या बात है. तो फिर आरफा फ्रॉम उंगाटा रुंगाई कहती हैं क्या बात है. कहने लगी कि आपा ने टेलीफोन किया है और कहा है कि अब भी परवीन आदम को टेलीफोन करके कहो उफ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया दिल से तलत को लाने के लिए. और आपा, आप बहुत इंजॉय करेंगे. एक एक गाना मैंने चुन कर रखा है. परवीन भट्ट, आप इंजॉय कर रही हैं तलत को, ऑफ कोर्स. तो समय ने कहा है कृष्ण सरोवर ने, एक अगर ये गीत ना सुनाया आपने तलत का तो कुछ नहीं होगा.

0: What, Ashwin Doshi, ye I would not have included it in my list agar Krishan Saroena kehte.
1: क्यों ये गाना तो बहुत
0: बहुत ब्यूटीफुल है, पर वो जो दूसरे हैं ना मुझे वो ज्यादा पसंद हैं, जैसे कि आगे जो रखे हुए
1: जी. दिस इज पर ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी.
1: ओपिनियर का म्यूजिक था और ये गीत लिखे थे सभी, ये गीत लिखा था साहिब लुधियाना भाई ने.
0: अच्छा, तो ओपिनियर काफी स्लो हो गए थे इस गाने
1: है ना. इट डिपेंड्स फिल्म का टेम्पो क्या है.
0: बिल्कुल सही. yes. सही
1: जो जो टेम्पो फास्ट है तो वो हाँ. उनका वो बजाते
0: हैं. ऑफ कोर्स
1: जो जो सीरियस स्टोरी होती है ये फिल्म जी, ये मूवी थी सोने की चिड़िया.
0: अच्छा, सोने की चिड़िया. ओके.
1: जिसमें बलराज सहानी तलत महमूद खुद
0: एक्टिंग कर रहे थे
1: और नूतन भी थी.
0: अच्छा, नूतन.
1: यस, और सीरियस स्टोरी थी पंडित जी.
0: हाँ हाँ.
1: और इसलिए वो ओपिनियर का म्यूजिक ऐसा
0: ऐसा हुआ. तो ये नूतन सोने की चिड़िया थी.
1: Yes. Haan. Yes. Sonia ki chidi the. She was a singing star, and every friend and relative wanted to take advantage of her.
0: Acha.
1: And she was being used.
0: Okay.
1: And then
0: achha.
1: Finally, she finds a companion who accepts her as she was, not as a singing star, but as a human being.
0: क्या बात है. अच्छा है.
1: बड़ी सी स्टोरी, गुड मूवी थी पर जी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली.
0: अच्छा, ओके. डिस्पाइट द फैक्ट कि मेगा स्टार नूतन उसमें थी.
1: नूतन थी, बड़ा सहानी थे. और म्यूजिक था ओपिनियर का, लेकिन अभी
0: क्या करें, लोगों की पसंद ही है.
1: पसंद ही ऐसी है. आप तलत महमूद की महफिल जमाई है
0: जी आज. तलत की महफिल पूरा घंटा.
1: थैंक यू. बस मजा आता है पर जी.
0: बस आप कॉल करते
1: अपना फेवरेट है और यू नो
0: जी. बिल्कुल. और आज फोन आपके करीब होना चाहिए, कोई मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए. ऐसे तो मैं बिजनेस ही ठप कर दूंगी लोगों के. आप जानते हैं अश्विन दोषी बिजनेसमैन
2: है. And then there is luxury living, where the first thing you hear is not the chaos of the city, but the calming serenity of nature, where you enjoy modern living in total privacy. Join the Big Breakfast and let us introduce you to Golden Hill Luxury Apartments. 102 units of premium, spacious, 3 and 4 bedroom residences located in Westlands, right next to Karura Forest. Plus, we will reward you with 3,000 Kenyan shillings to help you start your journey to owning one. That's on the Big Breakfast on East FM with Golden Hills Apartments. Nature meets luxury living in Westlands.
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
4: Pavitra Purushottam Mas Dharamyan, Pushti Margiya Vaishnav Sangh Nairobi Taraf Thi, Shri Vallabh Dham Haveli Khate, Dainik Darshan Mate, Sarva Shrotao Ane Parivarone, Hardik Amantran, Mangla Darshan, Savare Sava Satvage, Shringar Darshan, Savare Daswage, Rajbhog Darshan, Savare Agyarvage, Uttapan Darshan, Sanje Sada Charvage, Sandhya Darshan, Sanje Sava Pachvage, Shayan Darshan, Sanje Sada Chavage. A Pavitra Purushottam Masma, Divya Ashirvad, Ane Krupano Lab Leva, Saparivar Jodava, Vinanti.
2: Back to Kenya's premier Asian Mix, East FM. Your favorites from

0: और अश्विन जब तक रहेंगे इन आवाजों पे मर मिटने वाले तब तक लता जिंदा रहेंगे।
1: यस यस परी जी, ये थी फिल्म बारिस।
0: अच्छा बारिस, ओके,
1: या जिसमें तलत महमूद और सूर्या दोनों काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, तलत ने काफी फिल्में बनाई हैं, दो चार तो बनाई हैं।
1: दो चार नहीं थी, एटलीस्ट अबाउट
0: 10। हाँ डेफिनेटली। अच्छा
1: या तो वारिस परवीन जी, सुरैया और तलत खुद काम कर रहे थे।
0: अच्छा, सुरैया और तलत की जोड़ी
1: थी। और ये गाना ट्रेन में वो मुसाफरी कर रहे तब गा रहे हैं।
0: ऐसा और ऐसा म्यूजिक से जाहिर होता है कि ट्रेन ही होगी।
1: ट्रेन ही, यस।
0: क्या मुश्किल होता होगा ये करना म्यूजिक डायरेक्टर के लिए।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास।
0: वाह।
1: और गीत लिखा रहा कमर जलाल आबादी ने।
0: आबादी, क्या बात है।
1: ये परी जी सुरा मोदी की फिल्म थी और हिट हुई थी।
0: वाह क्या बात है। और अश्विन, हमें अपनी हिट मूवीज को याद करते रहना चाहिए। अगर आप अपनी हिट्स की वैल्यू नहीं कर सकते या अपने सिंगर्स को वैल्यू नहीं कर सकते, इट इज सो अनफॉर्चुनेट।
1: नो, यस यस, वी मस्ट
0: अप्रिशिएट,
1: दे हैव गिवन सो मच टू अस,
0: यस,
1: एंड वी स्टिल टू एंजॉय दिस पीपल। This was done more than 60, 70 years ago.
0: Of course.
1: But still, we are appreciating and enjoying the...
0: Enjoying, bilkul.
1: Yes. So, yes, we must.
0: Dilon ke taar chheerte rahenge ye gaane wale duniya mein nahi hain.
1: Yeah.
0: Lekin ye hota hai. Bilkul. Thank you, Ashwin.
1: Thank you, Parvinji.
0: So kind. Aur samay baki bhi messages to aaye hue hain. लेकिन समित, मैंने आपको बताना था वो पेंशनर्स का, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं। तलत इंतजार कर रहे हैं।

0: और समय आपने सुना कि एक बहू ने क्या किया है। उसके बाद जैनुल मोहम्मद, थैंक यू सो मच इंडीड। नसीम चौधरी कहते आज तो वाकई तलत की आवाज को तरस गए थे, आपने प्यास बुझा दी है। नसीम चौधरी बहुत, जो भी तलत का है समिन मदा फैन है, सिर्फ उसको पता है कि सच्चा संगीत क्या है, वरना तो टाइम वेस्ट है समिन। यहाँ पर हैं दिनेश पोपट, लविंग ऑल द तलत सॉन्ग्स। आप सिड कप लंदन में हैं, यस, क्योंकि आपका टेस्ट डेवलप्ड है समिन। और अमीना फ्रॉम मैचर, I'm standing still listening to तलत। I know you have your list, but if you can please for me, बेरहम आसमा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि ये बेरहम कैसे मुझसे बच निकला है। I would have included it अगर यहाँ होता, पर मैं ट्राई करती हूँ। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, डेडिकेटेड टू ऑल योर लिसनर्स, क्या बात है। बेरहम आसमा मेरी मंजिल बता है कहाँ, ब्यूटिफुली रिटन। और यहाँ पर हैं सलमा अहमद, परवीन जी आई थिंक यू आर शेयरिंग द इन्फो अबाउट अश्विन दोषी बींग अ बिजनेस मैन, इफ दैट्स द केस आई वंडर इफ ही इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस दोषी केमिकल्स एंड दोषी हार्डवेयर, सिंस द पास्ट आई हैव डेल्ट विद द ओनर्स। एनीवे माय हैट्स ऑफ फॉर द वास्ट नॉलेज दैट अश्विन दोषी हैज। मुझे नहीं पता इनके बिजनेसेस का नाम क्या, वो कभी नहीं बात करते। और जो लोग बहुत फड़े कहते हैं ना मारते हैं, वो नहीं मारते। यू सी, अगर वो थोड़े से फड़े मारते या ब्रैग करते तो एटलीस्ट हमें पता होता कि अश्विन दोषी की कदर क्या है। पर गुड, अब जो हैं यहाँ पर हैं लखबीर। लखबीर आपने कहा है कि ज़रूरी नहीं, ओके इट्स वेरी वेरी लाइट। अच्छा वो बाद में पढ़ते हैं, मैं पढ़कर पढ़ूंगी, पहले ये सुन लीजिएगा।
1: परवीन जी खामोशी के बारे कुछ सुन रहा था तो खामोश नहीं रहा। बड़ा खूब कहा किसी ने परवीन जी, आवाज़ सिर्फ कानों तक की जाती है, आवाज़ सिर्फ कानों तक की जाती है, मगर खामोशी रूह तक उतर जाती है। लफ्ज़ों का असर एक लम्हा होता है, लफ्ज़ों का असर एक लम्हा होता है, खामोशी तो आसमान तक पुकार जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी। एक और कहते हैं, तुम्हारी खामोशी भी कुछ कहती है, तुम्हारी खामोशी भी कुछ कहती है, बस समझने वाला एक चाहिए। दूरियां रूह की हो तो मिट भी जाती हैं, दूरियां रूह की हो तो मिट भी जाती हैं, अगर निगाहों में मोहब्बत सच्ची हो। तुम बस एक बार पलट कर देख लो, तुम बस एक बार पलट कर देख लो, शायद तन्हाई भी मुस्कुरा उठे और फांसले नज़दीकियों में ढल जाए। तो चलते चलते परवीन जी खामोश नहीं रहा, कुछ याद आ गया। तुम कुछ अजीब सा चल रहा है ये वक्त का सफ़र, कुछ अजीब सा चल रहा है ये वक्त का सफ़र, एक गहरी सी खामोशी है खुद के ही अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, खामोश नहीं रहूँगा, जल्द मिलता हूँ, धन्यवाद।
0: आप तो चाहते भी नहीं कि आप खामोश रहें, एक दिन खामोश होते हैं तो लोग पूछते हैं अजय पाल केनिया में है कि नहीं। और बात करते हैं जितेंद्र के साथ।
2: हरे प्रिय जी, वेलकम मंडे, बहुत सारे नु बहुत बहुत नमस्कार। जेडे पुराने गाने आ इन्हां नु असीं कदे नहीं भूल सकते, जिन्ना तक चक्कर आपां जियांगे याद रखांगे। इन्ने कई तां इन्ने गाने अच्छे हुंदे आ, उन्हां नु सारा दिन सुनी जाओ, कदे बंदा फैड अप नहीं हुंदा हैगा। बहुत हुण वी किन्ना सोहणा गाना लाया।

0: Hit FM, Kenya's premier Asian mix.
1: आज हम बुजुर्ग औरतें रात को 2 बजे निकल आती हैं ट्रॉलीज लेकर और कार्डबोर्ड इकट्ठे करती रहती हैं कहां पर शनाज बट ये मुल्क का नाम मैं नहीं चाहती किस जगह पर ये हो रहा है एक शहर सी जगह है Jabeen Hirani, living costs push elderly women to collect these scrap metal and plastic for pennies to make ends meet. Jabeen Hirani, bahut bahut meherbani, it's true, aapka answer bhi correct hai. Aur Farhanda Sheikh.
2: परवीन मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ पहले तो आपको ये दुलहज की बहुत बहुत मुबारक हो आज तो बड़ी रात होगी हमारी इबादत की इंशाल्लाह कल का हमारा रोजा होएगा इंशाल्लाह और परवीन मैं ये कहती हूँ कि प्लीज आप मेरी फरमाइश लगा दे नूर और ईश की बारात किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं क्योंकि मैंने 2 दफा फरमाइश भेजी आपने नहीं लगाई होप आप आज लगा देंगी ये अल्लाह हाफिज
1: अगर किसी ने मेरी शिकायत करनी है ना तो फरखंदा शेख का नंबर मुझसे ले लें अच्छा फरखंदा ये अच्छी बात है कि ये जो है गजल मोहम्मद रफी साहब की ये मिल जाएगी जो आप मुझे कुछ अजीब नाम देती है ना और अजीब फरमाइशें तो मैंने लेकिन ये मैं करूंगी पूरी ठीक है और मंजुला विश्वकर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर कहते हैं तलत जी के गानों का बहुत आनंद लिया फिर क्यों आपने अपना वॉइस मैसेज नहीं भेजा मंजुला विश्वकर्मा बहुत बिजी हैं और कौन आया है यहां पर हम उन्होंने नाम तो नहीं लिखा नलिनी आरशा Your playlist is excellent. बस ऐसी बातें मुझे चाहिए encouragement के लिए और ये भी जानने के लिए कि हम आपकी खिदमत में किस era के गाने सुनाएं अब हमें पता है आपको best era ही पसंद है क्योंकि आपका taste बड़ा हुआ है Old is gold in olden days. Love was expressed through romantic gestures. बिल्कुल सही और कहते हैं personal actions or deep emotional alternatives that made the partner feel uniquely seen and valued. कहते हैं हमारे गानों में हमारे जो सामने आशिक माशूक थे उनकी कदर छलकती थी कि किस कदर आप उनको वैल्यू करते हैं. Those days love was These days, love is fake. It has no value. It's artificial. There is no guarantee. But in the olden days, it was valued. Aur Nalini, in the olden days, to sari umr ki guarantee hoti thi. Ki umr bitani hai aapke saath. Pyar ho ya na ho. Ji ji. Farz nibhana hai. ओके ये कहती हैं रीना क्या आई रेड अबाउट दीज वीमेन आर दे फ्रॉम देयर बिल्कुल सही रीना और सोनल उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी उफ़ल्ला एक औरत झुकी हुई है समिन उसने हाथ में 4 बड़े बड़े वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पकड़े हुए हैं और प्लॉड करती जा रही है अक्रॉस द रोड और एक और दूसरा जो है वो मकोकोटेनी नहीं यहाँ कहते वो भरी हुई है कार्डबोर्ड की उफ अल्लाह व्हील बैरोस समझ ऐसे भी लोग अपनी कमाई करते हैं कुछ लोगों को इतनी आसानी से पैसा मिल जाता है

और बोंगो फ्लावा जो किंग अली किबा हैं, बहुत जाने जाते हैं, मारूफ हैं, वो भी हैं। बस ये कब हो रहा है, 31 मई को सरित एक्सपो हॉल में। टिकट J2.com पे एक शानदार वन नाइट ओनली के लिए बुक कर लें अपनी निशिस्त। फरखंदा की फरमाइश

0: बट ने क्या तलत महमूद के गाने एंजॉय किए हैं आज, वाकई बहुत बड़े फैन हैं। और अब देखते हैं कि जो मैंने पूछा है आपको समिन, उसका आंसर भी देना है। और पहले लखबीर, लखबीर ने जो लिखा था वो कहा था कि देखो ज़रूरी नहीं कि रास्ता मंजिल तक जाए, कुछ रास्ते इसलिए होते हैं ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। क्या बात है, कहते हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाएगा, अपने आप को ढूंढना है। और आपने सही आंसर दिया लखबीर, करेक्ट। और एक आवाज भी सुन लेते हैं।
1: थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह इतना खुश रखे, हम आपकी आवाज सुनते रहे और हमारा दिल बहता रहे। अल्लाह आपको इतनी लंबी जिंदगी दे और खुशियों के साथ आपकी हमेशा गोद भरी रहे। अल्लाह हाफिज।
0: आमीन आमीन। और सामिन ये बरकत वाले दिन हैं और फरहंदा ने जो दुआ दिया इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। और धीरूभाई लखानी, कितनी देर के बाद, बहुत खुशी होती है आपको सुनकर, सलाम, हमारा कबूल करें, मैं एक महीने से बहुत बीमार था। ओ धीरूभाई लखानी, आप सिर्फ कह ही देते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम आपके लिए दुआ करते, पर उम्मीद है अब आप ठीक होंगे, बिकॉज धीरू भाई लखानी रोज़ाना प्रोग्राम सुनते हैं सामिन, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो।
2: प्रवीण जी, रंग नूर की बारात की से पैर कसो, वो गाना फिल्म गजल का है जिसको मोहम्मद रफ़ी ने लिख गाया है और जिसको साहिल लुधवानी ने लिखा है और जिसकी धुन मदन मोहन ने बनाई है। ये मोहम्मद रफ़ी का गान बहुत अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा प्यार अली, एक और गाना आगे आ रहा है जो मैं खिलौने के बारे, समझ आजकल कौन खिलौनों के बारे में गाने लिखता है, लेकिन ये कमाल का है। और वेरी नाइस सॉन्ग्स, छिंदर सैमी आपको पसंद है, सलीम महर लंदन में।
3: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम, सलीम महर फ्रॉम लंदन। लाइफ इज रियली सिंपल but feelings and thinking makes it very complicated. Privileged, good morning to you and all your lovely Bemisal listeners. Khuda hafiz.
0: Sir, main inko keh rahi thi Saleem Meher ko aur Shabir Ahmed ko ke aapke to wahan flu aur cold aur ye gala aur bimari aur nazla aur zukam hota hi rehta hai. To main unko unke liye dua kar rahi thi, khud ko bhi khade hona tha line mein. अच्छा समीन, वो हांगकांग सिटी है जहाँ पर ये औरतें, इनको कहते हैं कार्डबोर्ड ग्रैनीज, बेचारी रात को ये पेंशनर्स उठकर, और क्या वो चीज़ें जो फेंक देते हैं दुकानदार, वो उठाकर रिसाइकल के लिए ले जाती हैं, और जहाँ से उनको कितनी थोड़ी रकम मिलती है। समझ, इस उम्र में अगर आप अपने शहरियों से इस तरह का काम करवा सकते हैं और अपने आप को बड़ा डेवलप्ड कहें तो अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। खैर, हांगकांग आज का आंसर था। या मैं कह रही थी कि ये गाना जो है समझ, जब गलियों में आया करते थे खिलौने वाले, उस ज़माने का है।

शायद आप में से कई एक ने देखी होगी 1960 में ये फिल्म देखी होगी जिसका नाम था माँ बाप। जी हाँ, इसमें राजेंद्र कुमार की एक्टिंग है। मुझे लगता है ये जो गाना भी मैंने सुनाना है ना आपको, वो राजेंद्र कुमार पर ही फिल्माया गया होगा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। म्यूज़िक चित्रगुप्त का है और राजेंद्र कृष्ण ने ये गाने इस गाने को सुना था लिखा था। आप भी सुनिए, ज़रूर इंजॉय करेंगे।

सिर्फ दिल टूटा है सांस नहीं धड़कनों में रवानी अभी बाकी है प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।

फिर मैनेजिंग पब्लिक रिलेशंस। सो मैंने पूछा था आपको, हैज़ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट एवर हैपेंड टू यू? सो मे बी द फियर ऑफ बींग डिफरेंट स्टार्ट्स अर्लियर देन वी थिंक। फ्रॉम चाइल्डहुड मेनी पीपल आर रिवॉर्डेड विद कन्फॉर्मिटी एंड नॉट इंडिविजुअलिटी। इन स्कूल द स्टूडेंट हु आस्क स्ट्रेंज क्वेश्चंस गेट्स लाफ्ड एट। द क्रिएटिव किड गेट्स टोल्ड टू फोकस ऑन सीरियस थिंग्स। द इमोशनल बॉय इज टोल्ड टू टफन अप। द आउटस्पोकन गर्ल गेट्स लेबल्ड डिफिकल्ट। Eventually, people learn one lesson. Blending in feels safer. We didn't just learn mathematics in school. We mastered survival through conformity.

0: Kenya's premier
1: Asian mix.
0: Asian mix.
2: 106 Music Marathon, only on East FM.
1: East FM.
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।